फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता

0: केंद्र, असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

Chintan. शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं होता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 331 लंका कांड आज आप सुनेंगे। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 4। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। आज सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकी सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। दोपहर 11 सुनिए विविधा के अंतर्गत रविंद्र जैन केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, रविंद्र जैन पर, जगजीत सिंह पर और निदा फाजली पर। 12:05 यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 से मन चाहे गीत। तीन बजकर 30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक वायलिन वादक, लेखन असद जहदी का, दिग्दर्शक मदन शर्मा का। 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा आज इस बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। पांच बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम आपको फिर से बता दे सुनिएगा श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 4। आमंत्रित कलाकार गायक और संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला 7:00 से, सैनिकों की शौर्य गाथा। एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है कल्पना शेट्टी। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8 सुनिए नाटिका परिवर्तन, इसका पहला भाग, लेखक हैं कामना चंद्र, निर्देशक हैं अनुराधा शर्मा। 8:15 पर चित्रलोक। 9 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज की फनकार, 10 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 सुनिए विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंका कांड भाग 331।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा।

लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे। यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्रीराम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए, किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 331, आपने सुना आज लंका कांड।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूं।
1: जी,
2: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
2: जी हाँ, कृष्णचंद्र डे उनका नाम था और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बांग्ला में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी, जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे, और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में। केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी।
2: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहे। बंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूं कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छाऊं, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी,
2: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी
1: जी,
2: तो उनके ही ऊपर वो फिल्म आया गया था
1: जी।
2: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छाऊं का ये गीत श्री कृष्ण चंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आंखें खोल।

0: धूम छाव फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनकी गायन की विशेषता थी, क्या कारण था, इतने लोकप्रिय कैसे हुए?
1: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है
0: जी,
1: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ।

0: का गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं
1: जी जी
0: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया। पर कुछ गायक थे जो मस्ती वाले गायक थे
1: जी जी
0: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज में तत्व होता था,
1: वरदान मिला था,
0: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आपकी लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है, इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है
1: जी
0: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने।
1: जी जी
0: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा मन की आंखें खोल। तो इस तरह का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूं इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाएं। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में फिल्म है पूरन भगत
1: जी।
0: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 से 1934 की फिल्म है और शब्द है जाओ जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल
1: जी।

0: श्रोताओं, आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे, उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन,
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं, तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है।
1: जी,
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूं ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में, या और दूसरे बंगाली संगीतकारों के गानों में आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा।
1: जी, आप सुनाएं प्लीज।

0: क्या बात है दादा, ऐसे लग रहा है कि अब तो आपसे
1: ये
0: यही
1: पटियाली का रंग है, मैं चाहता था कि श्रोताओं को थोड़ा सा इसका भी आनंद मिले, इसलिए
0: अब हम श्रोताओं से आपकी ओर से वादा कर रहे हैं कि अगली कड़ी में एक रंग भटियाली का जरूर सुनाएंगे। आप जो भी जानकारी देना चाहें, जो भी आप चाहें सुनवाएं, लेकिन एक भटियाली का रंग अगली कड़ी में जरूर सुनवाएं। इस बात के साथ हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज हमने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी, तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तरी हरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राघव मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रोहित जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय

0: शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सचे के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुगु पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartru Hari Mahtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Chami will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radhamohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. The Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali, and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
3: The Centers of Excellence will be established at Tezpur University in Assam, Vishwa Bharati University in West Bengal, Deccan College, Postgraduate and Research Institute in Pune, Central University of Odisha, and Central University of Gujarat. The initiative will provide dedicated institutional support for advanced academic research, preservation and digitization of linguistic and literary heritage, and wider dissemination of knowledge relating to these classical languages. The establishment of these five centers marks a significant step towards strengthening the institutional ecosystem for the study, research and preservation of India's classical languages. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
2: Ministry of External Affairs has summoned the Sharda Affairs of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. External Affairs Minister said that the Pakistani side was informed that three individuals infiltrated into Indian territory and, despite multiple warnings by the BSF to return to Pakistan, continued to move towards the border fence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu has called for concerted efforts to expand coffee cultivation in the state, improve productivity and bean quality, and enhance farmers' incomes through a stronger value chain. Addressing the Hills to Cup Coffee workshop organized by the Coffee Board of India and the State Agriculture Department, Mr. Khandu said coffee cultivation had existed in Arunachal for nearly five decades, but its potential remained underutilized. He said the state currently has around 600 hectares under coffee cultivation and stressed the need for technical support, policy interventions and value additions. Iranian President Masoud Pezeshkian said Tehran has adopted a new arrangement to manage what it described as the country's special conditions amid intensifying U.S. economic pressure and sanctions. In a social media post, Pezeshkian accused the U.S. and other adversaries of attempting to cut off Iran's vital economic lifelines to pressure the Iranian people. The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. The closing ceremony will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, the same venue that hosted the opening ceremony, and is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. India has put up an impressive performance at this year's Games, securing fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver, and 37 bronze. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई न्याय संहिता से 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपए के बोनस का करेंगे वितरण। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी और प्रदेश में हल्की ठंड का असर। रात में ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। श्री शाह ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में जो नए आपराधिक कानूनों का प्रावधान किया गया है उनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद आने वाले 1.5 वर्षों में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 वर्षों में न्याय दिलाने का काम पूरा किया जाएगा। इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणालियों में शामिल होगी।
1: नई न्याय संहिता में समग्र मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था तारीख पे तारीख के तानों से जानी जाती थी, मगर विशेषकर बहनों और युवाओं को मैं बताने आया हूँ, 1.5 साल के बाद, इसके पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आप कोई भी FIR कराए सुप्रीम कोर्ट तक दोषी को 3 साल में।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पांडुर्णा और मंडला जिलों के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंडला में आयोजित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 9,04,000 से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा के तेंदुपत्ता बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कार्यक्रम में 84 वन समितियों के सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक का कास्ट लाभांश भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पांडुर्णा जिले में अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान सांदीपनी स्कूल पांडुर्णा में सेवा मेरा योगदान तथा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अपनी कानून व सुरक्षा व्यवस्था के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा तक प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हर स्तर पर सघन प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार और पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण होंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा सेतु और सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में गतिविधियां जारी हैं, जिसके तहत आगरमालवा जिले में सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्किल अप प्रोग्राम के 80 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कल हुआ, जिसमें युवाओं को संवाद, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वर्क प्लेस और डिजिटल टूल किट की ट्रेनिंग दी गई। वहीं नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित जनकल्याण किया गया। मंडला के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर और विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। बैतूल के आमला में जनपद पंचायत कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में शिविर लगाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटे गए। मुरैना के पहाड़गढ़ में सांसद शुभमंगल सिंह दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान दीपक पुनिया और 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली अंतिम पंघाल को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय कुश्ती के लिए गर्व का क्षण है। पंघाल को बधाई संदेश में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि यह उपलब्धि युवा महिला पहलवानों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 48 ओवर और 2 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कर ली। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। दिन में धूप की वजह से जहां गर्मी का असर है, जबकि रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर के गिरवर और इंदौर में

17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सबसे अधिक तापमान धार जिले में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार रायसेन सीहोर राजगढ़ और विदिशा समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर साफ ही रहेगा, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल 13वीं दो दिवसीय इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट का समापन हुआ। झाबुआ के मेघनगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में निःशुल्क पंजीयन के लिए 23 केंद्र निर्धारित किए हैं। श्योपुर कलेक्टर शीला दहिमा ने आदिवासी विकास खंड कराहल के ग्राम कुंड में महिलाओं को गुटखा और पुड़िया से होने वाले नुकसान का लाइव डेमो देकर ग्रामीणों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। डिंडौरी के समनापुर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में कल संभाग स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। कटनी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हेलमेट तथा सीट बेल्ट को लेकर 10 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिले के हरसूद में रानी दुर्गावती जयंती समारोह के दूसरे दिन सांस्कृतिक एवं जनजातीय विभाग द्वारा नाट्य प्रस्तुति खेती खेड़ो हरिनाम की छोड़ी न चला जाए घरबार का मंचन किया गया। सीहोर की वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी का 7वां वार्षिक दीक्षांत समारोह कल संपन्न हुआ जिसमें पूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट रहे। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल इंदौर में कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी को प्रदेश सरकार 800 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान प्रदान करेगी। लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र में मंत्री कश्यप ने कहा कि नवीन लघु उद्योग लगाने के लिए 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। वहीं सागर जिले के सुर्खी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं तथा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नई न्याय संहिता से 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपए के बोनस का करेंगे वितरण। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी और प्रदेश में हल्की ठंड का असर। रात में ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

दूर जाने वाले वादा न भूल जाना सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कमर जलालाबादी ने बोल

0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जई हो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज थी शकील बदायूनी के बोल थे नौशाद अली की तर्ज लीजिए आप सुनिए एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में बोल हैं नक्षब के संगीतकार हैं श्याम सुंदर

हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके। एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे नक्षप के बोलते श्याम सुंदर का संगीत। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हम है राहे प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी को सविता सिंह का नमस्कार।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
3: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तराना फिल्म का गीत आपने अभी सुना शैलेंद्र सिंह और उषा खन्ना की आवाजों में। तिलक राज ने इस गीत को लिखा था, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार

0: प्रेम कथा
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी मार उड़ानी
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि बहुत छोटा सा एक अंतराल लिया जाए, उसके बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मेरे सनम फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: मेरा अरमा भी रह जाए, हाय हमदम मेरे।
1: मेरे सनम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। लीजिए अब सुनिए सांझ को आज नहीं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। कुलवंत जानी ने गीत लिखे हैं, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई।

साँच को आंचने इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। कुलवंत जानी की बोल थे राम लक्ष्मण का संगीत। और इसी गीत के साथ ही आज का हम है राहे प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल सदन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
4: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
5: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
6: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा

0: कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर्ड बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
3: आज केरला, माले, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। Expert at AR News Hindi को फॉलो करें और TV

0: तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लैम्बर हुसैनपुरी और साथियों की, राजशेखर गीतकार थे और संगीतकार थे कृष्णा।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: देखो सवेरा पूछे जाना है कहाँ, ऊंचाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जावेद अली, दीपाली साठे और मधुवंती बागची के इरशाद का मिलके ये बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

सुनील लोधी की आवाज में हनुमान अंश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये रचना एक पारंपरिक रचना आपने अभी सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। आइए इस कार्यक्रम में लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

तेजस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रश्मित कौर और शाश्वत सचदेव की आवाजें थी। कुमार की बोल थे, संगीत शाश्वत सचदेव का था। यह है बार बार देखो फिल्म का गीत। आवाजें हैं अरमान मलिक और नीति मोहन की। कुमार के बोल हैं और अमाल मलिक का संगीत।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह साथियों मनाया जा रहा है, वर्ल्ड स्पेस वीक। हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला दुनिया का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ये मानवता के सपनों की उड़ान का उत्सव है। अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए रहस्यों का महासागर रहा है। ये 7 दिन पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोता है। जब एक बच्चा किसी कोने में बैठकर चांद को निहार रहा होता है, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में कोई वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहा होता है। ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम सीमाओं में बटे हों, हमारा आसमान एक ही है, हमारी धरती एक ही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के महत्व के प्रति जागरूक करना है। बच्चों और युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा पैदा करना ताकि वे इसके बारे में और सीख सकें, इसलिए भी मनाया जाता है, जिससे हमारी धरती और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के ज्ञान का सही इस्तेमाल करना हो। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मनाए जाने का ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। आंतरिक शिक्षा, अनुसंधान और जन जागरूकता के कार्यक्रमों में दुनिया भर के देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमें ये संदेश देता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं। जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते रहें।

रोहित चौहान और अलीशा मेंडोंसा की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

फिर स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए परम सुंदरी फिल्म का ये गाना।

0: सचिन जिगर और विशाल मिश्रा अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो केंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: देवकी पंडित की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

टेलीसिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का ये उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाएं। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, येन केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आपने अभी सुना, आवाजें थी तारन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल दिया, अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन्द्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिले उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हरियाणा के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी। सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन के

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए किसानों द्वारा पंजीयन किया जा रहा है। किसान अपना पंजीयन 10 अक्टूबर तक करा सकते हैं। किसानों के खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए किसानों की पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। पंजीयन के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय जिला उपार्जन समिति, उपखंड स्तरीय उपार्जन समिति का गठन भी किया गया है। इसके साथ ही पंजीयन एवं उपार्जन कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की बात करें तो जिले के मऊ कस्बे में पिछले दिनों इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस शिविर में 364 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान 328 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं अन्य 36 आवेदनों के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान मंत्री श्री शुक्ला, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला पंचायत सीईओ ने प्राप्त आवेदनों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने संबल योजना के साथ हितग्राहियों, राशन पात्रता पर्ची के 2 हितग्राहियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 4 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण के बाद मौके पर एक लाभार्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं एक लाभार्थी को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की गई। भिंड जिले में 70वीं शालेय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 6 अक्टूबर से जिला मुख्यालय में किया जाएगा। 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 17 वर्ष के बालक और बालिका शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। साफ सफाई और शौचालय व्यवस्था, बच्चों के ठहरने और आवागमन, विजेताओं के लिए मेडल ट्रॉफी वाले किए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चे रुकेंगे वे सभी स्कूल संचालक अपने स्कूल की साफ सफाई कराएं। उन्होंने प्रतियोगिता ग्राउंड की साफ सफाई करने नगरपालिका भिंड को निर्देश दिए। इसके साथ ही खिलाड़ियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रतियोगिता स्थल पर स्वास्थ्य दल को उपस्थित रहने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। भिंड जिला रोजगार कार्यालय की ओर से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भिंड में बीते दिनों कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस शिविर में शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव के 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों एवं अधिकारियों द्वारा छात्रों को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार सही कैरियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। छात्रों को नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न ट्रेड जैसे ITI, TES, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि तथा ITI में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने छात्रों को शासन की रोजगारोन्मुखी योजनाओं तथा जिला रोजगार कार्यालय की सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक अपने प्रश्न पूछे और करियर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत भिंड जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बीते दिनों भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवा ऊर्जा, डिजिटल भारत, विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत सहित सपनों का भारत विषय पर अपने भाषण कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिले के शासकीय संभागीय ITI भिंड उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय MGS महाविद्यालय भिंड में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मेले में कुल 158 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। उपस्थित विभिन्न कंपनियों द्वारा आवेदकों की शैक्षणिक योग्यताओं, कौशल एवं अनुभव के आधार पर साक्षात्कार अध्ययन प्रक्रिया संपादित की गई, जिसके बाद 149 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। वहीं भिंड जिले के उमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत पौधरोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए परिसर में कुल 100 पौधे रोपे गए। वहीं मानव सेवा के संकल्प के साथ आयोजित रक्तदान शिविर में 14 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। भिंड जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है।
1: चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ। अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म वो ही हमने करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना सुख दे सकल जना, ऐसे
2: जी।
1: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
2: जी, जी
1: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
2: जी
1: उसमें मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों बाकी जो टीम था उनका कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उसे राखी बांध रही। मैंने कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूँगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में दो पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
2: जी।
1: तुम ताना ना ना ताना तर तर ये दिल है दीवाना
2: जी।

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सलगम।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों के स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा, जो तू तू तू तू तारा में हमें दिखाई देती है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही हूँ।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गा सकती
1: है। ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है।
0: जी, लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ,
0: है
1: वो एक वक्त के साथ आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल,
1: कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
0: जी।
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
0: जी।
1: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
0: जी।
1: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी।
0: प्रोफेशनल <आपकी तरफ से? laughs>
1: प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
0: बनानी
1: है
0: तो। जी, तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
1: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी। तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
0: जी,
1: आ रहा
0: जी,
1: पर
0: जी, एक अलग रूप से जी पाती,
1: से
0: उनके,
1: जी
0: संगीत
1: पाती
0: को,
1: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
0: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
1: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
0: जी।
1: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदा के नीचे, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
0: जी,
1: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
0: जी।
1: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
0: बिल्कुल,
1: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
0: बहुत
1: जरूरी,
0: ये एक बड़ा मन ही ये बात कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
1: कभी नहीं करूंगी।
0: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
1: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तु तु तु तु।
2: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
1: जी,
2: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
1: जी,
2: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
1: जी,
2: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना।
1: सही कहा।
2: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तारा के लिए बुलाया गया, है ना।

0: रंग ले रे और गीता दत्त जी का स्टाइल। जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ, तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, है ना, कोई माने ना माने। मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई दे सके। सॉरी मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर हाँ। का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस से।
1: बिल्कुल सही कहा है ना आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा

0: कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
1: हाँ, ये एक अजीब बात है कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी वो मिस्टर लोभा लोभा। मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
0: क्या बात
1: किसी
0: है?
1: और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशंस। मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ
0: जी। और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुना कितना, तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही बेकार है।
1: देखिए करिश्मा का एक एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया। छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हैं, वो हम पर छोड़ देते हैं।
0: जी जी जी
1: सोने जैसा तेरा मन, ये सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: ये सब हमारे इनपुट्स होते
0: जी,
1: हैं,
0: बिल्कुल।
1: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होती हैं। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
0: लेकिन एक गायिका या गायक के खुद की जो IQ है उसका जो
1: बहुत कम है,
0: है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है उसे पकड़े, मतलब
1: यकीन,
0: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
1: यहाँ
0: ले जाती है।
1: कुदरत कुछ साथ देता है,
0: हाँ
1: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
0: तो
1: बढ़ाते हैं,
0: आप
1: ये
0: कहें तो
1: मेरा
0: यही
1: मानना।
0: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
1: बिल्कुल,
0: लिया जाए,
1: प्लीज प्लीज
0: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे।
1: प्लीज
0: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड,
0: बहुत शानदार गाने,
1: वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही हूँ, इतना भी किसको मिलता है।
0: बिल्कुल, और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि
1: जी, जी.
0: मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के नहीं जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा
0: बिल्कुल,
1: बुरा कभी नहीं सोचेंगे?
0: और उन्होंने सोचा भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
0: जी,
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और
0: सही
1: आज
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
0: जी,
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझेत पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला देव बाई पावला जीवच कही वरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छुमंत।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वो ही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा।
0: जी,
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी, अभी ये 1 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। बात वहीं खत्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास है। वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे।
0: क्या
1: तो ये
0: बात
1: कितनी
0: है
1: बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी, ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है,
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो
0: क्या हो
1: सकता है
0: सकता है।
1: मंदाकिनी जी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ,
0: बिल्कुल सही
1: है
0: कहा।
1: ना
0: तो एक मराठी गाना सुन ले,
1: जी।
0: बताइए।
1: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम
0: जी,
1: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम एचएमवी ने,
0: जी
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
0: जी।
1: किल बिल पक्षी बोलती, झुर झुर झुर झुर झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे भर भर भरती, स्वप्न

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो
1: मराठी गाने बस, मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब मैंने जब रिमिक्स की बात की ना, नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है। ऊंची है बिल्डिंग टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं टाडा रा रा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: अनु मलिक के साथ,
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए है ना, पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचमदा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया। जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ। माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनके सबके जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी, हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलो कि क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
0: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
0: हो जाए,
1: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचे ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती
0: हूँ। आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
0: जी।
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है।
1: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
0: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
1: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
0: वो सीखेगा कहां से आगे के लिए।
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनके नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातोंरात स्टार,
1: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो। तो हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
0: जी, ताकि आगे चलकर एक
1: उनको,
0: हाँ, करियर जो बनता
1: है, हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को वो एक्सेप्ट करके बदले मुझे लगता है समझदारी उसी में
0: जी है एक गाना सुन लिया जाए
1: कौन सा बताइए
0: आप बताइए आपकी पसंद चल रही है हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं
1: हके या तू मिला ले राजा आए हैं दिन बहार के हके या तू चुरा न राजा जाए न दिन ये प्यार के मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू मिस्टर लोवा लोवा तेरी उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए
0: नहीं नहीं बिल्कुल
1: पर आज का ये मौका मैं नहीं। गवाना नहीं चाहती
0: और हम भी मौका नहीं गवाना चाहते तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं

0: मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लवा लवा मेरी जान ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूं तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना पसंद करते हैं।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है।
2: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना, जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी
1: जी।
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेती हैं आपकी पसंद
2: प्लीज। चने के खेत में।
1: अरे

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज की विविधा में न जाने कितनी स्मृतियों की मंजूषाएं खुलने वाली हैं।
0: जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम है ही ऐसा।
1: हाँ।
0: हमारे विविध भारती का जो संग्रहालय रूपी खजाना है,
1: हाँ।
0: उस खजाने से चुन चुन कर ऐसे जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
1: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं।
0: जी मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को
1: जी
0: स्मृति दिवस सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं, तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविंद्र जैन।
1: रविंद्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविंद्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया, उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: और रविंद्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविंद्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविंद्र जैन साहब का संगीत एस्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविंद्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविंद्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविंद्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी, और रविंद्र जैन साहब का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविंद्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे जिन्हें हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियाँ उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था, तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं हैं। इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सोची?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं उनमें यूँ था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लफ्ज तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा। और कुछ यूँ भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी,
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
2: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
1: जी,
2: तो उसका कोई ना कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
1: जी,
2: या फिर राम तेरी गंगा मेरी का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
1: प्यार का सावन में, जी हाँ
2: जी हाँ प्यार का सावन में
1: जी,
2: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है
1: जी,
2: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
1: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
2: जी,
1: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी तो उनसे, यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है अंतरे में, आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया,
2: जी हाँ जी हाँ,
1: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
2: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाए तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
1: संगीत भारतीयों के जीवन में, यानी हमारे जन्म से पहले से
2: जी
1: शुरू होता है।

0: ठीक है ना,
1: जी
0: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है। तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है, और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें। और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
1: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुनें, गाने की धुनें पहले बना ली जाती हैं
0: जी,
1: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
0: जी।
1: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वह एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
0: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं। समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना, गजलों का भी, गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
1: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो हैं वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
0: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य पे काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है, तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें, नज्में, नाज शरीफ, हम इस तरह की चीजें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
1: अनुवाद काम,
0: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ, पर्शियन से सरल उर्दू में।
1: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
0: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
1: जी,
0: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
1: बंगला पे, उर्दू पे,
0: जी जी जी जी
1: हिंदी में कर ही रहे हैं
0: जी जी। हिंदी उर्दू तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है, वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
1: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
0: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले भी यशोदा जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
1: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
0: मगर संगीत किसी जुबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जुबान है,
1: अपनी भाषा होती है
0: जी।
1: तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में?
0: नहीं, सिर्फ उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए,
1: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती
0: जी। नहीं,
1: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
0: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं, जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
1: जी
0: सीता माता को कि वे राम जी ने की भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को

0: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
1: और जयंत जी,
0: जी
1: रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती है। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलोडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो है उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओ, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के ज़हन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
2: जी,
3: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
2: जी।
3: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
2: जी,
3: वो आप तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
2: जी।
3: तो अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
2: सही बात,
3: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
2: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोड क्यों नहीं बनाया
3: जाए?
2: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
3: थोड़ा सा असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
2: जी
3: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में

0: आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
1: अच्छा, और एक चीज अब खास तौर पे मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
2: जी,
1: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी, या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
2: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान बिल्कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
1: जी,
2: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफ़ी हेल्प मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
1: अच्छा, तो ये
2: वो तो मेरे बोल से आपको समझ गए होंगे।
1: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
2: नहीं,
1: जी
2: मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हो, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसकी मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो
1: जी,
2: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
1: जी जी, एक इल्ज़ाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज़्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
0: ये तो देखिए, अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं जिसमें, उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं, तीन मिनट में खत्म भी हो सकती है
1: जी।
0: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे, दो दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि दो घंटे में दिल्ली पहुंचे
1: जी,
0: क्योंकि इतना वक्त नहीं है ऑडियंस के पास भी, इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि ढाई घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों
1: जी,
0: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
1: अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसे ज्यादा नहीं।
0: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये?
0: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
1: जी।
0: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेर में हो, जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
1: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
0: हाँ, एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
1: जी,
0: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं तीन घंटे कान में, तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
1: जी जी,
0: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में, तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए, 7000 आदमी हॉल भरा हुआ। या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी, 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए, वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया। वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
1: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी
0: देखिए, वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
3: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी, और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सब के चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी। और देखिए, यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ दूँ और आपसे क्या क्या सवालात करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
3: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहां भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं, फिर गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं, फिर हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं, फिर धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं, फिर वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया जो सदियों की अमानत है, जो हम सब की रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जी होता है फिल्मों की तरफ। चूँकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना आदिमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद आदिमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चॉइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफ़ी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस ज़माने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहाँ वो काम कर रहा था, थोड़ा थोड़ा, कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पर पड़ी हुई है, और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज़ भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आँख मिचोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को ख़त्म नहीं करता, तो मैं कमाल अमरोही के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं, कि जी मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है, लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें, मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूँ कि इल्मी शायरी अलग होती है, फिल्मी शायरी अलग, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत ज़रूरी है। जानिसार अख्तर, मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूँगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूँ। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो ज़ुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कह रहा हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहाँ मलका आलिया रज़िया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही हैं, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर मकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफ़ेद घोड़े पर काले लिबास पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरीफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्क्ड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस ज़माने में आया उनमें लड़कियाँ काफ़ी चतुर हो चुकी थी, वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नजर आती हैं रोटियां। तो मेरी जो एफियर्स रहे वो यक तरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतजार किया, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। और उस वक़्त मेरे पास ना फ्यूचर था ना वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी, मैं एमए कर रहा था अंग्रेज़ी में, तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहाँ मैं बैठता। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलम मतलब क्लासरूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस जमाने में एक नज़्म भी गई थी, वो फूल फूल नज़र सांवली सी एक लड़की जो रोज़ मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर हो के तलाशे बाहर करती है। न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतज़ार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की ज़रूरत।

सी हो गई है मुझे, मेरे बरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीज़ें कि जैसे मुझ ही में शामिल हैं, मेरे दुखों में, मेरी हर खुशी में शामिल हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा और नाज से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतज़ार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज़ नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है?
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनके रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाज़त आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का
1: नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैंकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सैंकड़ों की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल

0: किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई दर देख के चल।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है।

0: जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो।

0: तरह। तीन बज रहे हैं, तीन।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज में एस एच बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वाधिकिया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वद किया गीत, फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

दोस्तों नमस्कार। किसी कोने पर, घर के किसी कोने पर सजा रेडियो विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम आ चुका है आपके रेडियो सेट तक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में। आज की जो इबारत है दीवार, उसमें कुछ दीवारें बातें करती हैं, और ये इबारत जो हमने फेसबुक पर डाली है वो एक बार आपके लिए पढ़े देते हैं श्रोताओं। ये दरो दीवारें जिनमें एक उम्र की कहानी होती है, कभी साथ बैठकर घुल मिलकर इन्हीं दीवारों के साए जिंदगी परवान चढ़ी। घर की ये दीवारें जिनसे कभी धूप तो कभी चांदनी को उतरते देखा था, चंदन की खुशबू की तरह आज भी आंखों में बसे हैं वो दिन वो रातें। कभी जुड़ते कभी टूटते रिश्तों की चश्मदीद हैं ये दीवारें। शादी ब्याह की धूम में साथ रत जगा भी करते देखा है इन दीवारों को। कभी प्यार कभी रंजो गम, कभी ताशे तो कभी शहनाइयों की धुन इन्हीं दीवारों में सिमट जाती थी। बचपन में जिन दीवारों पर चित्र बना देते थे, कभी जिनके सहारे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, कभी इनके साथ छुपा छुपी का खेल भी खेला। दीवारों से बने घर, उसी दर को भुला पाना आसान नहीं। माँ बाबा के घर से पिया के घर तक जाने के सफर की राजदार हैं ये दीवारें। सच सच बता ए दिल, क्या उसी दर को ढूंढती हैं आज भी ये आंखें जिनसे वादा था कभी लौट कर आने का। साथियों, हम जहाँ हैं आज या हमारा शुरुआती जीवन जिस घर में बीता, उनकी दरो दीवारों में आज भी समय की स्मृतियां हैं जो कहती तो कुछ नहीं लेकिन उनकी पुकार को हम सुन तो सकते ही हैं। दीवारों से मिलकर घर बनता है, कभी सीमेंट ईंट से तो कभी मिट्टी की दीवारें, लेकिन रिश्तों का सौंधापन साथ बैठकर रसोई में खाना खाना और दीवारों के सहारे ऊपर जाती वो छत। हम तो चले आए लेकिन यादें वहीं रह गईं। चलिए उन्हीं दीवारों के साए चलते हैं जिनकी मरम्मत का भी शायद समय आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास नहीं। वैसे दोनों दीवारों को दुरुस्त करने की कहां तक जरूरत है, एक जो मन में है और दूसरी जो घर में इंतजार करती है। तो लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से जिसका नाम है सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओ, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहाँ की गई पढ़ाइयाँ, तो बहुत सारी यादें हैं और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं। तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में और सारा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती हैं, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नमाखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

0: का उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी

नूतन और देवानंद पर फिल्म आया गया ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाई नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोताओं, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाज़ें आती थीं क्या,

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की, महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं, और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहाँ मेरा जन्म हुआ आज भी गाँव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूँ। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले, और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताज़ा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नज़र आए तो अच्छा लगता है। बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और नहीं वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है, वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे, और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं पर हाँ काफी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है, बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और ना जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार

ने छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी, जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसे कुछ यादें हो तो आप ताज़ा कीजिए। लिखते हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसरी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनवाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों किस्साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन हैं। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहाँ हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहाँ आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे। एक तो ये सवाल आपको बताना है और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ जो घर जहाँ से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहाँ पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था, तो आप हमसे ज़रूर ये बातें ताज़ा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी ज़रूरत पड़ती थी, ना ही फ़ोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा ये, पंखा नहीं होता था और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी वो वही काम करती थी।

श्रोताओं, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने का जो एक कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है, ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था, नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे, हम लोग रेडियो खेलते थे तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर, बड़ा मजा आता था। उन दिनों की आज याद पूरी ताज़ा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहाँ बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहाँ पानी की बूंदें भिगरती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपट कर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीता श्रोताओं, गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े हुए इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और कुमकुम नज़र आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है। सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी ज़रूरी है, जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो, तब सोने पर सुहागा हो जाता था। रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन जो हैं वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था। बचपन में चॉक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी, वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे। हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं, तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे। और सच में जैसा पुराना घर था, वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी, लेकिन दीवारों पर वारली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वारली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं, वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफ़ेद लेप होता है उससे बनाई जाती है, और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है, जो वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत, इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं? और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओं, मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था, या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था, या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी, तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे?

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दिलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छोटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया, पुरानी यादों में खो गए, क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठ कर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है, उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं, घर की बातें होती हैं, वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत, इन दीवारों की मरम्मत आपको ज़रूरी लगती है? जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था, ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुँचे जिस घर में आपको जाना था, लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना? ऐसा कुछ

गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में हैं।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद है जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल के हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था।

और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था, कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे, ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार, तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर। तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला, तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया, तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओ, तो कुछ ना कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से ज़रूर किया होगा, उनको दुरुस्त करने का और ये वादा कि वहाँ लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफ़र यहीं सम्पन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

0: किशोर कुमार की आवाज में गाए याराना फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला में आयोजित कार्यक्रम में 9,04,126 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 36,17,37,518 रुपए की बोनस राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही 84 वन समितियों के सदस्यों को 26,56,53,229 रुपए का काश लाभांश भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट और दक्षिण बालाघाट वन मंडलों के तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद पाडुना में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में प्रमुख उद्योगपतियों औद्योगिक विकास के अवसरों पर चर्चा करेंगे। बैठक इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के तहत आयोजित होगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश की पूरी तरह नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए ड्रग्स और नशे को खत्म करना बेहद जरूरी है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि 2029 तक ये देश पूर्णतः ड्रग मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा। निश्चित रूप से ये इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जब उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने की बात की थी तो उसको मूर्त रूप दिया और देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ। कहेंगे मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कटिबद्ध है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर और डिंडौरी सहित विभिन्न जिलों में आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों ने विकास योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। वर्ष 2027-28 की ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव तैयार किए गए। स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त गाँव, बाल विवाह और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता पर भी जोर दिया गया। ग्राम सभाओं में सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल पंचायत और ग्रामीणों के विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। प्रदेश से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 24 जून को दाखिल हुआ था और 3 अक्टूबर को विदा हुआ। मानसूनी सीजन में प्रदेश में 35.8 इंच बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से करीब 4% कम है। अगले 3 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 7 अक्टूबर से पूरे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई के बाद अब दिन में गर्मी और रात में ठंडक पड़ने की संभावना है। अमन सहरावत ने एशियाई खेलों में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस वर्ग में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में जन विश्वास अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने शहपुरा विकासखंड के 3 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। नर्मदापुरम जिले में शासकीय गृह विज्ञान अग्रणी महाविद्यालय में 3MP बटालियन के दिशा निर्देशों के तहत NCC कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाया। झाबुआ में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार निगरानी, पेट्रोलिंग और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास सेतु अभियान के तहत आयोजित शिविर में विधायक गौरव सिंह पारधी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स और डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। कुछ ही देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। नम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
2: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
4: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल दो पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
5: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
4: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हुती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हुतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हुती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
7: हुती विद्रोहियों के दियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हुती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हुतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अलबहा में हुती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस में 260 हुती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हुती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हुतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

0: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहित व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नख में। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र की बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में। साहिल अध्यानवी के बोल थे रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाशदीप, इस फिल्म का गीत आपने सुना? मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटी, लागी नहीं छूटी राम सुन का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

श्री रामचंद्र की तर्ज साहिल अधिहानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहू रानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चले हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदनाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्ता रेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और मोखीलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटा धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नोह मनगार हसरत जयपुरी मस्कार शंकर जय किशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से दिदवा साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन चौमा, अजरुद्दीन तमामुद्दीन चौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचनगांव जिला वर्धा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता है रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता है, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुष जी और नेहा अमेठा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए, भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया वो अनिल सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा ऋतु, अभी सुनाता हूँ।

0: एक बात पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तो कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अना, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
2: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
3: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थी, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
4: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
2: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
2: जानते हैं, मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
2: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
2: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
2: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा, आखिर रोल तो तुम्ही को करना है।

0: गए तुम?
1: अच्छा नहीं रामा।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़वा नाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर पत्रा बहुत अच्छे आदमी
1: होंगे मगर
0: अनाम।
1: माँ इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा, तुम चाहोगे तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा, आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसे

0: नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया। बस इतनी सी बात थी।
1: अना, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
0: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि माँ को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान माँ मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: अब मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
0: आखिर क्यों?
2: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
0: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
2: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
2: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूं, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है किसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं है,
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमटकर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
0: अनाम खाना खा,
1: चल घर चल,
0: जा
1: बाजा बजा,
0: बाजा बजा,
1: जाकर सो
0: सो जा,
1: चल
0: उठ
1: उठ कर हाथ मुंह धो,
0: हाथ मुंह
1: धोकर
0: नाश्ता कर, चल
1: बंद कर।
3: खुश रह
4: अकेले ही जाना मेरे साथ चलना अच्छा नहीं होगा मेरे साथ चलने से क्या होगा मैं तेरे लिए बॉल मंगाई मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था उन्होंने कहा
5: अनाम
4: के लिए बॉल
5: अनाम अनाम क्या हुआ बेटे क्या तुम डर गए थे सपना डरो मत बेटा डरो मत
2: हाँ माँ सपना था सपना सपने के अंदर सपना सपने के बाहर सपना सपने के अंदर सपना सपने के बाहर सपना

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना नाम बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया मैं चलती हूँ।
2: ये वॉल्यूम बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटी मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ, तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की माँ अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन ये है कि अनाम महोदय बेचैन है, घर पर ताला लगाकर वे अपनी माँ के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम दिन भर से कहाँ गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम, ये वॉयलिन उठाकर दिन दिन भर आवारा गर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
2: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
2: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
2: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
2: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
2: ठीक है जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं, आखिर क्यों? ये सुनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया, कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है, मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
2: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात?
3: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
3: पता नहीं।

0: चलन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
1: मिस्टर अनाम,
0: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता।
2: महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
3: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
4: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
3: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
2: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
5: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
3: कहाँ है उत्तर?
5: कहाँ है उत्तर?
2: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
5: कहाँ है उत्तर?
6: अनाम भैया।
2: हाँ रितु।
6: वायलिन सुनाओ ना।
2: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी, है ना?
6: हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: सुनते हैं अनाम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान है, वो भी उसी के साथ है।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।
0: पड़ोसी ने आकर खबर दी है कि वायलिन बजा बजा कर अनाम ने अपनी उंगलियों को घायल कर डाला है। तमाम वायलिन उसकी उंगलियों

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक। नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों के उजाले।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँ
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
2: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
2: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
2: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
2: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
2: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
2: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
2: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था।
0: यूनुस
2: जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
2: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
2: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
2: कुछ नहीं, 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 0.5 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
2: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं, अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
0: ओहो हो,
2: तो ये तपस्या होती है
0: जी
2: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
2: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
2: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
2: उसकी साधना।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
2: परमेश्वर। तो यहाँ से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए
0: जी। जी,
2: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
2: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती है,
2: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई, और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कवाल जो थे उन्होंने दी
0: जी।
2: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
0: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
2: तमाम
0: प्रदेशों में,
2: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
0: जी
2: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
0: साउथ हो,
2: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब एक अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
0: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
2: इतना काम।
0: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
2: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
0: वाह वाह।
2: और 17,000 रुपए का घर था।
0: क्या बात है।
2: तो पहला घर अपना
0: किस इलाके में था?
2: खार में।
0: जी जी,
2: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
0: जी।
2: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए कर्जा था।
0: अच्छा।
2: हाँ।
0: आधा कर्जा था।
2: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
0: काम तो कर ही रहे थे।
2: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
0: जी।
2: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
0: जी जी जी।
2: वो लड़के को म्यूजिशियन बना रहा था, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
0: जी।
2: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
0: जी।
2: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
0: बिल्कुल।
2: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
0: म्यूजिक डायरेक्टर,
2: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
0: जी,
2: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
0: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
2: अमर हो गए जी, बिल्कुल। ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार, जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगल जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है
0: जी।
2: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर, जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ
0: जी,
2: बहुत सारे उस टाइम पे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
0: नोटेशन
2: लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
0: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
2: और उसकी नॉलेज होना
0: जी,
2: वो बहुत जरूरी है।
0: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो में
2: जी,
0: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
2: जी,
0: बजेगा।
2: मोस्ट प्रोबब्ली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है
0: जी।
2: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
0: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
2: वो चाहे बदल भी सकते हैं, क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट और लिखने वाला उनका, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
0: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
2: सोनिक उमी हाँ, सोनिक उमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
0: जी
2: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
0: बाबा
2: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वहां लिख रहा था और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
0: जी,
2: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनका लिख रहा था वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, डेढ़ मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो,
0: गजब।
2: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी कर के आओ। वो वापस गया मोविला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
0: ये मेमोरी सोनी जी की,
2: क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटास्टिक अरेंजर, फैंटास्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वाज टोटली कंपोज बाय मास्टर जी. मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक. सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी जी? फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा. सुना ये कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां. ओके, टेक करो.
1: क्या बात है.
0: तो म्यूजिक डायरेक्टर एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया? नौशाद साहब ने. ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर एक्शन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं.
1: जी जी जी.
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए. सिंगर्स का तो नाम आता है, पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता. हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है. अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया. मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता.
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया.
1: अच्छा.
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ.
1: ओके.
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है.
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है. और उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ. जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा. अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी. म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक भिजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर.
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी, जी.
1: हॉर्न की आवाज आती
0: जी,
1: है,

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी।
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: नए सबके साथ और सबके साथ, बसंत के साथ
1: जी।
0: फिर पार्टी जी थे जिन्होंने काम किया, कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आर डी बर्मन के साथ काम किया, एच डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ

0: काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी। जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को। उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है। तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग बात, लक्ष्मी नारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम लोगों
0: भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर। उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर। उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया। तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ। बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते।
1: जी जी।
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया है।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था।
1: जी जी।
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ जैसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी। हाँ,
0: सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं यहाँ, मैं भी कार में था, तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया।
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया। बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया। उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनीराम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कह ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है
1: जी,
0: सबसे
1: जी।
0: बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है
1: और ये कॉपी नहीं कर रहे।
0: किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग, कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो ही बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: लेकिन हो नहीं सका
1: जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी
1: डैडी, मोपेट जी,
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से गाड़ी निकली, हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड
0: जो से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मेरे को, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका, मैंने कहा अन्ना आप कहा? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहा बाइक में जा रहे? मैं कहता अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप
1: जी जी,
0: आशीर्वाद लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने

0: शुरू इनके साथ किया
1: जी
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी और लगातार साथ रहा,
0: लगातार साथ रहा जब तक वो नहीं गए
1: जी,
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन के साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मनोज जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। सवा 9 बजे के करीब हम लोग सब सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सैक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो मेरे बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: वासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमरुत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8,
1: और 1 चंद्रकांत।
0: 9। गजब गजब।
1: 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे,
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना,
0: हाँ,
1: रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी दिमाग तो ज्यादा आता नहीं था उनके ड्रेसिंग रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, मतलब इसमें उनके बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं।
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब तो रोज ही बजाते रहते थे, बट पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
0: क्या बात है,
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
0: जी जी,
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, वो केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती करती केबीएन, उन्होंने गलती करती केबीएन, एक तीसरे ने गलती करती केबीएन, कोरोस ने गलती करती केबीएन। तो ये केबीएन कुछ चार पांच महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया था,
1: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से के वायरल वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंचम जी, मैं पिछले छह महीने से सुन रहा हूँ केबीएन केबीएन केबीएन, आशा जी की गलती हुई थी केबीएन, गोपी जी की गलती हुई थी केबीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी, अब इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
0: क्या बात है,
1: लाइक अ फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी।
0: वाह,
1: फिर मैंने कहा केबीएन केबीएन। सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े, वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
0: जी जी जी।
1: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गए। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
0: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
1: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
0: हाँ।
1: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
0: जलपरी वाला
1: वायलिन सोलो का पीस था।
0: अच्छा,
1: सागर फिल्म।
0: जी।
1: तो जी वो कमल हासन बजाता है।
0: अच्छा अच्छा, वो जी।
1: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
0: जी जी जी।
1: मैं बड़ा परेशान होकर, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
0: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
1: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते
0: जी,
1: इतना भी मारा हुआ टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
0: हाँ।
1: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे
0: जी,
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी है, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, तुम ये यहाँ से बजाओ, बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन कर, जैसे ये ऐसे
0: स्नैप आ जाए,
1: तू हाथ से करना
0: जी,
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
0: जी,
1: अभी ए,
0: हाँ
1: ये साउंड है
0: जी,
1: ये चाहिए, तार टूट गई।
0: हाँ हाँ।
1: तो दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
0: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
1: नहीं नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया। हम लोगों ने बजाया, मैं कह यार क्या बात है, तो मैं वेट कर रहा था पंचम की, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैं पंचम था ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूटर बना तब मुझे समझ में आया कि वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: नहीं याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं था कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, exactly after 20 years, I'm making the film, and the success of the film is probably, I think, was destined or decided by him. तो इसको लीला बोलते हैं।
3: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

फूलों की खुशबू में तेरा ही सुरूर अच्छा लगता है तेरी आवाज में डूबा ये नूर अच्छा लगता है तू बोलती है तो लफ्जों में बहारें जागती हैं तेरे लहजे का ये मीठा दस्तूर अच्छा लगता है हवा भी रुक के सुनती है तेरी आवाज की खुशबू तेरी बातों का दिल पर ये फितूर अच्छा लगता है तेरी आवाज जब छेड़े कोई भूली हुई गजल हर एक नगमे में तेरा ये गुरूर अच्छा लगता है एक

तेरे ख्याल से दिल में रोशनी बिखरती है मेरी हर सांस में खुशबू तेरे ही महकती है तेरी नजर जो कभी मेरी नजर से मिलती है वक्त कुछ पल के लिए यूं ही ठहर सा जाता है तेरे कदमों की आहट जब सुनाई देती है दिल की धड़कन में कोई गीत बहने लगता है तेरे

मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाते हैं, चांद भी रात में कुछ और खुशनुमा रहता है। तेरी बातों में जो ठहराव है वो क्या कहिए, दिल को हर हाल में संभाले रहता है। तेरे होने से मुकम्मल से लगती है दुनिया, वरना इस दिल में कहां कोई तेरे अलावा रहता है। मैंने मांगा ही नहीं और कोई ख्वाब कभी, तेरा चेहरा ही मेरी चाहत का नजारा रहता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। तेरी हंसी छूती है जब मेरे ख्यालों को, दिल मेरा फूल सा खिला रहता है। तेरी आवाज का असर कुछ ऐसा है मुझ पर, दूर रहकर भी तू करीब सा रहता है। तेरे खामोशी में भी सुनता हूँ तेरी बातें, तेरा एहसास मुझ में समाया रहता है। तेरे आने की खबर भर से महक उठती है शाम मेरी, जैसे मौसम कोई खुशगवार रहता है। तेरे होने से सुकून मिलता है इस दिल को, तेरा ख्याल हर लम्हा मुझे थामे रहता है।
1: हुए हैं तुमसे आशिक हम।

तेरी आंखों का असर किस तरह बयान करूं, एक नजर थी मगर सदियों की तलाश मंजिल थी, तू मिला तो मुझे खुद से भी मोहब्बत होने लगी, तेरे आने से मेरे होने की मुझे वजह मिली, तेरे बिन भी तेरा एहसास मेरे साथ रहा, जैसे वीरान मकाम में कोई रोशनी की खिड़की थी, हमने चाहा भी नहीं इश्क हो इतना गहरा, फिर भी इस दिल में तेरी चाहत की बेकरारी।

तू जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब ना मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। ना कोई वादा मांगा ना कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

0: तेरी नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।
1: कहां से लाई हो जान।

अपने दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं। अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

ये हमको बताएं क्यों? तो कहा गौस पाक ने कि मेरी माँ ने बार बार ये नसीहत की थी चलते वक्त के बेटा कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ कैसे बोलता। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। इस बात का डाकुओं पर क्या असर पड़ता है।

कैसे खुदा को मुंह दिखाएंगे, कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। आखिर में क्या होता है, गौस पाक की बातों का उस सरदार पर क्या असर पड़ता है।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: देखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
3: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना,
3: RBI कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पाडुना में तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में 3D तकनीक से आवास निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया और एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 10 पदक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में आयोजित कार्यक्रम में 8 वन मंडलों के 9 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के खातों में 36 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस राशि से मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट सहित विभिन्न वन मंडलों के तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनवासियों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाडुना में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के तेज विकास और नागरिक सुविधाओं को शासन की प्राथमिकता बताया।
1: बात जब से जिले की घोषणा हुई है, हमने लगातार विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देते हुए जिला कार्यालय से लेकर सभी लगातार पदों की मंजूरी भी देते जा रहे हैं और हरेक क्षेत्र, चाहे आज जिस जगह हमें है, ये सांदीपनी का भव्य दिव्य भवन बनना, ये अलग अलग प्रकार की सारी संभावना पे काम करते हुए सरकार के माध्यम से जो बताया गया कि जो सामान्य से बारिश कम हुई है, हमारे राज्य के लोगों के लिए, पांडुरना के लोगों के लिए रोजगार से लेकर के सभी प्रकार की मदद की जितनी प्रकार की जरूरत हो हम पूरी सहायता करेंगे।
0: उन्होंने युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार से जोड़ने, कृषि एवं स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और पशुपालन व दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं के विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु शिविर में विभिन्न योजनाओं के हित लाभ वितरित किए। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले के बुरी पालिम गांव में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाने की परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सेवा सेतु अभियान के तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और प्रमाण पत्र वितरित किए। वर्षों से आवासीय अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे लोहपीटे समाज के पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे भी प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में जबलपुर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब के हो रहे प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर में विद्यार्थियों के नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देशभर में चयनित 500 विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर भी शामिल है। अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर मिल रहा है। लैब में रोबोटिक्स, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, 3D प्रिंटर, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस लैब में स्मार्ट डस्टबिन, स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लूटूथ कार, धुआं पहचानने वाली कार,
3: और बाधा पहचानने वाली कार जैसे नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, समस्या समाधान और डिजाइन सोच विकसित करना तथा उन्हें केवल तकनीक का उपयोग करने वाला नहीं बल्कि नए समाधान तैयार करने वाला बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी 5 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर देश की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शूटिंग में नीरू डांडा ने 2 स्वर्ण 1 रजत सहित 3 पदक जीते। विवेक सावकर और इशिका चौधरी ने हॉकी में स्वर्ण, क्रांति गौड़ ने क्रिकेट में स्वर्ण और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया। राज्य के अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के बड़ौद में आयोजित 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय विज्ञान मेला एवं वैदिक गणित प्रतियोगिता में मालवा प्रांत के विभिन्न जिलों के 386 छात्र छात्राएं शामिल हुए। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु अभियान के माध्यम से नगर पालिका कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। खंडवा जिले के हरसूद में वीरांगना रानी दुर्गावती एवं गोंडवाना की गौरवशाली विरासत को समर्पित जयंती समारोह जारी है। आज दूसरे दिन पारंपरिक लंगड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगर निगम द्वारा प्रसिद्ध धर्म टेकरी में श्रमदान अभियान चलाया गया। भोपाल में दिव्यांग, अनाथ और निर्धन बच्चों के लिए करीब 45 वर्षों से काम कर रहे समाज सेवी सरदार खान के जीवन पर बायोपिक फिल्म बनाई जाएगी। गुना जिले के राघोगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने एक दिव्यांग आवेदक को रेड क्रॉस के माध्यम से 10,000 रुपए की तत्काल सहायता दिलाई और स्वास्थ्य विभाग को उपचार में सहयोग के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पाडुना में तेज विकास को शासन की प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में 3D तकनीक से आवास निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया और एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 10 पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी
4: फीस तो देखो
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: हाँ, फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ है?
7: मिठाई।
8: आरबीआई कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: ये आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
11: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: टिकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
0: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे भाई,
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसा कि सर आज का जो हमारा विषय है, हम बात रबी फसलों की तैयारी की कर रहे हैं, वाकई इस समय जो किसान भाई हैं वो रबी में भी उलझे हुए हैं और खरीफ में तो लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय लोगों के लिए जहन में यही है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मौसम जो है इस बार बारिश कम हुई है जैसा कि हम सुन रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या संभावना आप देखते हैं, मौसम की बरसात जो हुई है उसके आधार पर कैसी फसलें लगना चाहिए?
1: किसान भाइयों के लिए मेरा एक सुझाव है
0: जी
1: कि खेत के अंदर जो नमी है उसका सदुपयोग आगामी फसलों के लिए अवश्य हो, और यदि ऐसा नहीं होगा तो सिंचाई जल की पूर्ति में कमी आएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों जैसे ही खरीफ की फसल काटें उसके बाद उसमें बखर चलाएं, बखर के साथ साथ पाटा भी चलाएं ताकि खेत भुरभुरा तैयार हो और खेत के अंदर जो नमी है वो संरक्षित रहे।
0: जी जी।
1: दूसरा एक ये है कि यदि आपने ऐसा कर लिया, खेत तैयारी कर ली है, तो उसके लिए जरूरी है कि बुवाई करें किसान भाई, लेकिन तुरंत बुवाई करें और पानी डालें यदि पानी कमी समझ में आती है।
0: बिल्कुल। बाकी कुछ ऐसे ही सवाल हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे आज श्रोता पूछेंगे, और पहला कॉल हम तक आ चुका है, बात करते हैं। हेलो। हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं
2: जी? मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: एकदम बहुत बढ़िया हैं। और आपके वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं इस समय रवि की?
2: बिल्कुल बिल्कुल, रवि की तैयारियाँ चल रही हैं, पर अभी खरीफ की तैयारियाँ कहीं जाए तो वो भी चल रही हैं, क्योंकि अब पहले खरीफ से फ्री हो जाए फिर रवि की तैयारियाँ भी शुरू हो ही जाएंगी।
0: क्या बात है। कटारे जी, अपना परिचय तो दो सबके लिए, हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए।
2: ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
0: विपिन जी, सवाल बताइए आज का क्या है?
2: सवाल सर ये था कि विषय है जैसे, तो विषय पे ही मेरा सवाल ये था कि रबी फसलों की तैयारियों के बारे में मुझे जानना चाह रहा था। जिन लोगों ने उड़द की फसल लगाई थी वो तो शायद फ्री हो गए लगभग, और कुछ खेत उन लोगों के ऐसे भी हैं जो असिंचित हैं और खेतों में नमी है, तो क्या ऐसे खेतों में अभी अगले 10-15 दिनों के अंदर सरसों की बुआई कर सकते हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल।
1: हाँ, किसान भाइयों, जिन खेतों में उड़द की फसल लगी है वो कट गई है या गल गई है, जो भी स्थिति हो, उस खेत में बखर चला के बारीक खेत तैयार करें और उसमें आप सरसों की बुनी कर सकते हैं, और उपयुक्त टाइम है अभी, और ये 10 अक्टूबर के बाद कर लेंगे जब तक तैयारी होगी आपकी।
2: और ये दलहनी में अगर कुछ बताना चाहें
1: तो? दलहनी में तो मैं आपसे बताऊं कि चना की बुवाई कर सकते हैं।
2: अच्छा।
1: मसूर की भी बुवाई कर सकते हैं दलहनी में। तिलहन की फसल में यदि आपकी रुचि और है तो सरसों के अलावा अलसी का भी कर सकते हैं।
2: जी जी सर बिल्कुल। तो
0: धन्यवाद
2: की बात है ना।
0: जी जी जी, जी।
2: बहुत शुक्रिया सर आपका।
0: धन्यवाद धन्यवाद विपिन कटारे जी हमें कॉल करने के लिए, हमारे नियमित श्रोता हैं, हर बार इनका फोन आता है, बहुत अच्छा सवाल इनका रहता है। और सर जैसे देखिए बात निकलती है तो बात समझ में आती है, चने की बुआई को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि चना कैसी मिट्टी में बोने की जरूरत है, चना कब बोना चाहिए, सही समय क्या है, क्योंकि इस समय दलहन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि दलहन उत्पादन

0: संग्रह किया जाए।
1: चने की फसल के लिए दलहनी जो फसलें होती हैं उनको बीज को अंकुरित होने से लेके बढ़ने तक के लिए जो मृदा वायु की ज्यादा जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मृदा वायु उस खेत में सबसे ज्यादा उपलब्ध होती है जो ढेलेदार खेत तैयार किए हैं। तो चने दलहनी फसलों के लिए ढेलेदार खेत तैयार करें, ना कि बारीक खेत तैयार करें।
0: मतलब चना की खेत जो है उसकी तैयारी ढेलेदार होना चाहिए। हाँ। अगर रेतीली मिट्टी है तो और अच्छी बात।
1: और अच्छी बात है
0: जी। हमारे अगले श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है?
2: ग्राम सनोतिया जिला गुना से सर जी।
0: मांगीलाल जी बोल रहे हैं
2: जी, जी।
0: क्या बात है, आपकी आवाज हम लोगों के कानों में बस चुकी है साहब, है ना
2: जी।
0: और आप लोग जब बोलते हैं ना तो बस हमें अपने वाले ऐसा लगता है, बस आप हमारे अपने हैं और हमसे बात कर रहे हैं। मांगीलाल जी कैसे हाल चाल है?
2: सही है सर जी, मैं बढ़िया हूँ आपकी दुआ और भगवान की कृपा से। और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप और डॉक्टर साहब भी बढ़िया होना।
0: एकदम बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया है ना। चलिए आज का विषय तो आपने जान ही लिया है, रवि फसलों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बताइए क्या सवाल?
2: बढ़िया विषय रखा सर जी, क्योंकि समय भी रवि का ही चल रहा है।
0: हाँ।
2: मतलब अभी तो चला नहीं लेकिन चलने वाला है, जो सरसों का तो आ ही गया जी, मैं अक्टूबर माह
0: सही बात
2: लगाई देते। तो मैं इस बार आपसे और डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि इस वर्ष कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपने समाचारों में बताया था बारिश कम है, वो बात सही है। तो अपन को गेहूं अगर लगाना है तो अभी लगा सकते हैं क्या?
0: अभी गेहूं
2: कम सिंचाई वाले।
1: हाँ भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गेहूं की अगेती फसल आप लगा सकते हैं और खेत की तैयारी बढ़िया करें। कहते हैं मैदा गेहूं ढेले चना, तो मैदे की तरह खेत तैयार करना होगा। तो दो तीन बाह करके और जो खेत में नमी उसी में कर लें, और लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आप गेहूं की बोनी कर सकते हैं। आप इनमें सर्वती गेहूं बोना चाहते हैं या कठिया गेहूं बोना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है,
2: सर वो किसान के ऊपर
1: है ना। लेकिन जो भी बीज बोएंगे तो बीज उपचार करके बोइएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि असिंचित दशा में बो रहे हैं तो कतार से कतार असिंचित दशा में, तो उसके लिए कतार से कतार की दूरी 10 से 12 इंच रखिएगा, है ना, ताकि और बीज दर जो है आपका वही रहेगा 100 किलो प्रति हेक्टर की तरफ, है ना
0: जी। धन्यवाद मांगीलाल जी फोन करने के लिए। सर जैसे अगेती गेहूं की बात की जा रही है, अगेती मटर जो है वो अर्ली मटर जो है वो इस समय अक्टूबर में लगभग मैं समझता हूँ लगा देते हैं किसान भाई, तो उनके लिए कोई सलाह?
1: मटर का की यदि खेती करना चाह रहे हैं तो मटर की उनके पास यदि बीज के रूप में रख रखा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीज उपचार करके बोएं, फफूंद नाशी रसायन से बीज उपचार करके बोएं। और ये थायरम है, कार्बेंडाजिम है, नहीं है तो कार्बोक्सिन 2% है, जिससे इस्तेमाल करें 2 ग्राम प्रति केजी सीड के साथ उपचारित करके बीज उपचार केंद्र में करें तो सोने पे सुहागा।
0: वाह वाह वाह।
1: करके बोएं और कतार से कतार की दूरी कम से कम 12 इंच
0: रखें। हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं फिर जानते हैं। हेलो हेलो
3: कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा।
0: बिल्कुल आपने सही जगह फोन लगाया है।
3: सर जी पहले आपको श्रीमान रतनदीप सोनी जी को भी पशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी मेरा परिचय श्रीमान जी, ग्राम बापू छितीपुर, ग्राम पंचायत छितीपुर, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी से प्रणाम सिंह रजक।
0: प्रणाम सिंह रजक, आपको हमारा प्रणाम।
3: सिंह रजक प्रणाम।
0: अच्छा सरनाम सिंह रजक। अच्छा ये बताओ आप करेरा से बोल रहे हैं, है ना?
3: करेरा से।
0: आपका जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है, गेहूँ ज्यादा लगता है या चना मसूर दलहन ज्यादा लगती है?
3: नहीं गेहूँ लगता है सर जी, गेहूँ ज्यादा लगता है, गेहूँ मटर ज्यादा लगता है।
0: गेहूँ मटर ज्यादा लगता है जी जी,
3: सरसों भी लगती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपका सवाल।
3: श्रीमान जी मेरा आपने मेरा प्रश्न सर जी ये लोकमान गेहूं की उन्नत किस्में बता रही जो आड़ी ना हो सर जी क्योंकि थोड़ी सी हवा चली आड़ी हो जाती फसलें सर जी
0: लोकवन की ये समस्या है बिल्कुल
1: किसान भाइयों के लिए मेरा ये संदेश है कि गेहूं आड़ा तब होता है जब खेत में नत्रजन युक्त उर्वरक का उपयोग ज्यादा किया जाता है पहली बात दूसरी बात यह है कि गेहूं आड़ा तब होता है जब गेहूं की फसल के ऊपर गेहूं की फसल के ऊपर जो क्रास में बोनी करते हैं जिसकी वजह से यदि मावटा गिरा या सिंचाई करे स्प्रिंकलर से तो फिर वो गेहूं आड़ा होने लगता है तो यूरिया की संतुलित मात्रा मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर देने का प्रयास करें और उसके साथ साथ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश युक्त फर्टिलाइजर मतलब मिक्स फर्टिलाइजर दें और रिपोर्ट के अनुसार दें कि कितनी मांग है तो आपके गेहूं की फसल में आड़ा होने की संभावना नहीं होगी
0: जी जी
1: ये बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं हेलो हेलो
4: हेलो नमस्ते भैया राम राम
0: नमस्ते राम राम कैसे हैं
4: बढ़िया सर जी मैं ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह से लक्ष्मण सिंह बात कर रहा हूँ सर
0: लक्ष्मण सिंह जी कैसे हैं आप वहाँ कैसा माहौल है समय मौसम ठीक है
4: मौसम ठीक है साहब अच्छी गर्मी पड़ रही है अब तो धूप निकल लगी है काफी और कटाई भी चल रही है उड़द सोयाबीन की
0: हाँ अब देखो कुंवार के धमंग का है साहब जी तो पड़ेंगे कुंवार में तो कहते हैं ना कि किसान भी चक्कर खा जाती है ऐसी बढ़िया धूप पड़ती है ना तो वो तो अब प्रकृति के नियम है अपने अब 8-10 दिन की और बात है ना
4: जी
0: बताएं लक्ष्मण सिंह जी क्या आज सवाल है आपका
4: पर हमें मटर बोने तो हर वालो हाँ। किसमें बता सर जो
0: अर्ली मटर अगेती मटर बोना है ना
4: जी
1: देखिए मटर की जो किस्में है बोन विले है पूसा प्रगति है PLM 3 है जिनको कि आप किसान भाई लगा सकते हैं और ये 60-65 दिन में तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है
0: बिल्कुल मैं तो, समझता हूँ मटर हमारे किसान भाई बहुत अर्ली मटर लगा लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हरी मटर का पूरा एक तरह से एक नकदी फसल के रूप में उसका इस्तेमाल करके बाद में पर सवाल से जुड़ा सवाल ये है सर कि जैसे मटर लगाई 60 दिन में मटर खत्म हो गई उसके बाद फिर कौन सी फसल उसमें लगाई जा सकती है
1: नहीं मटर के बाद देखिए हम आपसे बताएं कि यदि सिंचाई ये है 60-65 दिन की फसल हो गई उसके बाद गेहूं का क्षेत्र है तो गेहूं लगा सकते हैं
0: दिसंबर में आराम से गेहूं
1: आराम से लगा सकते हैं गेहूं और कोई दिक्कत 25 नवंबर तक के लिए अनुशंसा है सिंचित गेहूं की उसके बाद फिर यदि 25 नवंबर के बाद है तो उसकी किस्में बदली जा सकती हैं जो कि लेट का कंडीशन में लगती हैं तो उनको अपन लगा सकते हैं तो ऐसा है कि दिसंबर में बोना है या जनवरी 5 जनवरी तक बोना है तो उसकी किस्में थोड़ा दूसरी है तो वो ले सकते हैं किसान भाई
0: अच्छा फिर जब दिसंबर आखिर में और जनवरी में जब हम लगाते हैं गेहूं तो उसमें बीज दर क्या रखना चाहिए
1: बीज दर उसमें सवाया करना चाहिए
0: अच्छा बढ़ जाएगी
1: हाँ एक कुंटल अनुशंसित प्रति हेक्टर अनुशंसित समय है जो 25 नवंबर तक है उसके पास 25% बीज बढ़ जाएगा एक कुंटल 25 किलो डालना पड़ेगा क्योंकि फसल की ग्रोथ कम होती है बालियों की लंबान कम होती है दानों की संख्या तो एवरेज कम ना होने पर
0: कम हो जाता है अगले श्रोता से हम बात कर लेते हैं हेलो हेलो
5: नमस्ते सर जी
0: नमस्ते नमस्ते कहां से बोल रहे हैं
5: जी जी गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी
0: मनोज नामदेव जी वाह वाह वाह वाह वाह मनोज जी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और आज सवाल बताइए क्या है आज आपका
5: जी जी बिल्कुल सर जी मेरा ये सवाल था कि मेरे दो खेत खाली हो चुके हैं क्योंकि उनमें उर्द मूंग लगे हुई थी क्लियर कर दिए मैंने और मैं सोच रहा था कि उसमें सरसों की खेती कर लूं तो पहली बात तो सरसों की उन्नत किस्म दूसरी बात सरसों बहने से पहले क्या क्या सावधानी बरतें ये बता दे आपका जवाब ध्यानपूर्वक मैं रेडियो पर सुन रहा हूँ
1: चलिए अच्छी बात
0: है आपकी इसी अदा के मुरीद है
1: सबसे बड़ी बात यह आपसे बताएं कि पूसा रोहिणी भी है इसके अतिरिक्त है वरुणा भी है जो पुरानी किस्में हैं जिनमें कि आप लोग कर रहे थे पर यह है सावधानी ये रखना है कि पर्याप्त नमी में बोनी करें खेत की तैयारी गेहूं जैसे करें और उसमें उसका उपचार बीज उपचार करना है थायरम और कॉर्बेंडाजिम से करना है 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से नहीं ब्रैसिकाल से करना है और नहीं तो मैंकोजेब है उससे भी कर सकते हैं बीज उपचार करके बोए बीज दर जो है उसकी जो रहेगी 2.5 एकड़ में या 1 हेक्टर के लिए अधिकतम 5 किलो रहेगी इससे ज्यादा नहीं रहेगी कतार से कतार की दूरी आपके पास सिंचाई के साधन कितने हैं उसके हिसाब से 18 इंच से लेकर 24 इंच तक रहेगी खेत में जो मैंने कहना चाहिए जीवांश पदार्थ की खाद यदि पर्याप्त पड़ी है तो 24 इंच कतार से कतार की दूरी रखें पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच रखेंगे तो खेत बेगरा नहीं कहलाएगा
0: सर इसमें आपको बीच में रोकूंगा हमारे बहुत सारे किसान भाई छिड़काव विधि से सरसों लगा देते हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप
1: छिड़काव विधि से लगाते हैं लेकिन सरसों के खेत में यदि खरपतवार उगती है तो उनका उनको निकालने के लिए पौधों को रौंदना पड़ता है और पौधे जब पांव के नीचे आते हैं तो बड़ा कष्ट होता है
0: सच बात है हमारे अगले श्रोता से बात कर लेते हैं हेलो
6: जी सर मनोज भैया जयराम जी
0: की भैया कहाँ
6: शंकर पटेल बोल रहा हूँ पिपरिया कर्रापुर सागर मध्य प्रदेश से
0: उमा शंकर पटेल जी कर्रापुर से बाबा
6: जी आपको मैं सुनता रहता हूँ एक खास बात ये है
0: जी
6: कि मैं भोपाल में रह रहा हूँ मगर जब पिपरिया में रहता था ना 2000 ये समझो 2000 सन में ही मेरा जन्म है 1990 का जब से 95 से जो सागर चालू हुई थी जब से ग्राम सभा सुन रहा हूँ और आज 2026 चल रही है आप जोड़ लो
0: क्या
6: मैंने अपना मतलब पूरा परिचय इसलिए ऐसा दिया है सर क्योंकि आपकी जो आवाज है और मैं जब से आपकी आवाज सुन रहा हूँ आज भी
0: जी
6: आपकी आवाज बहुत मीठा है
0: धन्यवाद उमाशंकर जी आप मतलब बड़े स्थापित श्रोता हैं आकाशवाणी के बहुत पुराने श्रोता हैं और आकाशवाणी से आप जुड़े हैं ग्राम सभा से जुड़े हैं ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और आप भोपाल में रहते हैं
6: जी जी जी कटारा हिल्स
0: अरे वाह क्या बात है
6: जी तो, मैं सुन रहा हूँ आप ये समझ लो आप मेरे पास रेडियो है आज भी तेल वाला
0: वाह
6: क्या
0: बात ये बहुत आप जैसे ही श्रोताओं की वजह से रेडियो आज जो है वो लोगों में लोकप्रिय है ना चलिए आपका सवाल क्या है उमाशंकर जी
6: सवाल ये है सर कि मुझे मसूर की किस्में जाननी थी मसूर और चना जो मतलब कम पानी में हो जाए
0: बहुत अच्छा सवाल है मैं सच बताऊं आपको उमाशंकर जी बस अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब से यही था क्योंकि मैं दलहन की बात कर रहा हूँ दलहन उत्पादन को लेकर सरकार काफी लोगों को बढ़ा रही है आगे बढ़ा रही है कि भैया दलहन को जरूरी है आत्मनिर्भर बनाना है भारत को दलहन के क्षेत्र में तो दलहन की हम बात करने वाले थे आपने सवाल पूछ लिया बिल्कुल आप सुनिए
1: भाई सबसे बड़ी बात बताएं कि जहाँ तक चने की बात है तो चने की बहुत सारी किस्में हैं जो मध्य प्रदेश के 2 कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से विकसित की गई हैं आरजीवी 204 है जो इम्प्रूव्ड है आरबीजी 201 203 है और 205 भी है ये राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है इनमें रोगरोधी क्षमता होती है लेकिन फिर भी किसानों को एक विशेषज्ञ होने के नाते सलाह है कि कोई भी बीज दलहन का खेत में बोने के पहले बीज उपचारित अवश्य करें फफूंदनाशी रसायन से और उसके बाद यदि असिंचित दशा में लगा रहे हैं तो राइजोबियम कल्चर पीएसबी कल्चर का भी उपयोग आवश्यक रूप से करें जो कि फफूंदनाशी रसायन उपचार के बाद करते हैं आई डोंट राइजोबियम कल्चर चना और पीएसबी कल्चर का एक एक करके उपचार करें फफूंदनाशी रसायन से उपचार करने के बाद और तीसरी परत पीएसबी कल्चर की होगी और वो छाया में रखें उसको ताकि बीज से बीज न चिपके क्योंकि गुड़ के साथ मिला के किया जाता
0: है जी जी जी चलिए हम अगले श्रोता से बात कर लेते हैं हेलो
7: जी राम राम सर
0: राम राम कहाँ से बोल रहे हैं
7: आदिवासी बाहुल क्षेत्र उमरिया से बात करत लागे आहो संतोष कुमार राव और माननीय डॉक्टर महोदय से भी प्रणाम करतानी और कहतानी सर कि जैसन हमार आदिवासी बाहुल क्षेत्र उमरिया आए तो अपने आप में खास पहचान रखत है और आज हमार डॉक्टर महोदय से प्रिय प्रश्न आए कि सर इस समय दलहन फसलों में हम मसूर के प्रयोग ज्यादातर करी थी उपयोग करी थी सर और सब्जी वर्गन में आलू की तैयारी किस प्रकार से करे जाए चाहिए
0: संतोष जी मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ आप मसूर की तो बात कर रहे हैं आपका क्षेत्र उड़द सॉरी इसके ज्वार बाजरा और कोदो कुटकी ये सब जो भी आपके यहाँ होता है उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ अभी लगाते हैं आप लोग
7: ये कोदू कुटकी तो सर कटने के लिए तैयार हो चुकी
8: है। अब क्या
7: फसलें बोएंगे हम लोग?
8: अच्छा, मोटे अनाज में अब कौन सी फसलें लगाएंगे आप?
7: मोटे अनाज में सर इस समय तो अब मात्र राई और मसूर की फसलें लेंगे और फिर इसके बाद में चना की बुवाई।
8: चना की लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए।
1: तो मसूर के लिए मैं आपसे बताऊँ, GLS 1-2 है, इनका किस्म लें। और जो आपके क्षेत्र में बीज उत्पादक संस्थाएं हैं उनके पास से संपर्क करके अच्छे बीज लें जो उन्नत किस्म है, लेकिन बीज उपचार करके बोएं। और बीज की मात्रा प्रति हेक्टर जो है 30 किलो रखें मसूर की, और बीज उपचार करके ही बोएं। और कतार से कतार की दूरी 12 इंच रखें, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर में 12 से 15 पौधे हों, या हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
8: बिल्कुल
1: सर, ये विशेष ध्यान रखने की बात।
8: सर मसूर पर बाकी बहुत सवाल हो गए हैं, चने पर भी लोगों ने जिज्ञासाएं ली हैं। चने पर लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि चने में उगरा लग जाता है, उगटा लग जाता है, चने में पानी कितना देना चाहिए, बुआई के समय नमी कितनी होना चाहिए, बुआई की तरीका क्या है चने का?
1: चने का वास्तविक बुवाई का तरीका है लाइन सोइंग, कतार में बुवाई करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और बोनी जो होती है कतार में करने पर, वो जमीन की गहराई भी हम निश्चित कर पाते हैं, छिटवा फेंकते हैं तो ऊपर बिक जाता है, तो जो बीज ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो वो नमी के संपर्क में होगा नहीं, नहीं होगा, और उसका नुकसान खेत में जीवों के द्वारा भी कर नुकसान कर दिया जाता है। और बीज उपचार रहता है तो उसमें मृदा के अंदर रहने वाले फफूंद जनित रोग नुकसान नहीं कर पाते।
8: अच्छा, जो पलेवा करके बुवाई करते हैं चने की, वहाँ फिर
1: पलेवा करके बुवाई कर सकते हैं, लेकिन यदि लेट हो रहे हैं तो आप बोनी कर दें उसके बाद पलेवा कर
8: उसके बाद को लेकर
1: तो वो ज्यादा होगा, समय बच जाएगा जो बतर में आने का।
8: और चने का मिजाज को जैसा होता है कि वो तो फोड़ के बाहर आ ही जाता है जमीन को। हमारे अगले श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर जैसे अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं चने की, मसूर की, अलसी भी बहुत आयत में लगाई जाती है,
1: आवश्यक है।
8: और अलसी के बारे में क्या निर्देश है, किस तरीके से खेत तैयार होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि गेहूं के लिए मैदा, चने के लिए थोड़ा सा मोटा।
1: अलसी की फसल जो होती है उसका जो सीड कोट होता है, माने बीज चोल होता है, बीज आवरण जो होता है वो चिकना भी होता है और मोटा भी होता है, तो ज्यादा नमी में उसको बोया जाए तो उसके अंकुरण की परिस्थिति अनुकूल बनती है, पहली चीज। उसको भी उपचारित करके बोएं। और इसकी जो बीज दर जो है 12 से 20 किलो के बीच में रखते हैं, जमीन के हिसाब से, तासीर के हिसाब से। और कतार की दूरी इसमें भी 12 इंच से कम ना रखें, क्योंकि जब पौधा बढ़ता है इसमें शाखाएं फूटती हैं तो इसकी कैनोपी फैल जाती है। और तिलहन की फसल जितनी है और दलहन की फसल जितनी है, क्योंकि सूरज की रोशनी की घंटे इनके बराबर है,
8: अच्छा
1: उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अब तिलहन में बदलने के लिए पोषक तत्वों को और दलहन में बदलने के लिए इनको तिगुनी ऊर्जा की, दुगुनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है।
8: बिल्कुल।
1: अब वो ऊर्जा सूरज से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही हो पाता है, तो इसलिए इसकी उपज कम ना हो, बहुत संख्या भी पर्याप्त रहे और साथ ही साथ इनका कन्वर्शन भी हो सके प्रोटीन और आयल में।
8: चलिए हम अगले श्रोता से और बात कर लेते। हेलो हेलो
9: हेलो सर जी, सभी को मेरा दिल से जय सियाराम।
8: जय सियाराम, नाम बता दीजिए ना, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
9: जय हीरामन बाबा रेडियो सोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर।
8: विनोद नारायण जी ईसागढ़ से बोल रहे हैं ना
9: जी सर।
8: मूंगफली की फसल लगाई थी आपने
9: सर? मूंगफली की तो नहीं लगाई सर, क्या थोड़ा पानी की हमारे जिधर केतना सा अच्छा। समस्या रहता है
8: हमें जब ईसागढ़ और वहाँ की याद आती है तो मूंगफली और खिन्नी याद आने लगती है हमको।
9: जी जी सर, वो अपने पास में ही है ना सर, चंदेरी
8: की। जी जी जी जी, तो अब बताइए क्या सवाल है आज आपका।
9: सर मेरा सवाल ये था, जैसे कि सर अभी अब रवि की तैयारियों में लगे हुए

0: है तो सर चने की उत्तम किस्म बताइए सर, जिससे कि हमारी फसल की पैदावार ही है ना सर, जो कि हम अधिक लाभ ले सके।
1: बिल्कुल, आपके यहाँ की मिट्टी भी चने के लायक है ना वहाँ?
0: जी जी जी जी,
1: क्योंकि लाल मिट्टी ज्यादा है आपके
2: सर। पूसा मतलब पूसा की भी वैरायटी है और साथ है पूसा पार्वती है, बीजी बीजी 30-62 भी है। इसके अलावा RVG 201, 202, 203, 204, 205 भी हैं और JG 515 भी है। और इस तरह से आप इन किस्मों में JG 11 है, अवरोधी है, पूसा 372 है, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आपको जो मिल जाए
1: सही
2: तो उनका उपयोग आपको करना है, बीज उपचारित करके करना है और बिना उसके नहीं बोना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको।
1: वाकई आज हमारे जो किसान भाइयों ने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल बिल्कुल इस समय जो पूछने चाहिए थे वही सवाल हैं। सबको इस समय कोई दलहन, कोई तिलहन, कोई गेहूं को लेकर तैयारी में लगा हुआ है और उसी से जुड़े ये सवाल थे। मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए बतला दूं कि आज जो ये कार्यक्रम हम यहाँ लेकर आए हैं, सजाकर सवाकर लाए थे, उसमें हमें जो सहयोग मिल रहा था वह सहयोग कंट्रोल रूम से हमको सहयोग कर रहे थे प्रवीण कुमार जी और राजू वासे जी। उद्घोषिका के रूप में मीठी मधुर सुरीली आवाज आप सुन रहे थे श्रद्धा गुप्ता की थी। प्रसारण के रूप में जो सहायक हमें मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था प्रसारण सहायक के रूप में रीना राठौर का था। कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था और सूत्रधार के रूप में आपके साथ था मैं मनोज सक्सेना। मैं सर आपसे एक और चलते चलते जानकारी लेना चाहूँगा। हमने चने की बात करी पर काबुली चने पर भी लोगों का बहुत रुझान है, इस समय काबुली चना लोग लगा रहे हैं, तो काबुली चने की दो चार अच्छी किस्में और किस तरीके से लगा जाए, हमारे पास 2 मिनट का समय है।
2: देखिए काबुली चने में काक 2 है जो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो वैरायटी है बड़े दाने की है। और दूसरी बात यह है कि इसको जब भी हम लगाएंगे तो कतार से कतार अच्छी उपज वाली जमीन है, मतलब उपजाऊ जमीन है, देसी खाद का प्रयोग बढ़िया किया गया है, तो हाँ कतार से कतार की दूरी 14 से लेकर 18 इंच तक रखना चाहिए, क्योंकि पौधा बढ़ता है,
1: पौधा बढ़ता है
2: और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर में 10 दाने हैं तो आपका खेत बेगड़ा नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और अधिक पैदावार लेने के लिए दूसरा ये है कि जब 30 दिन के करीब की फसल हो जाए तो उसके ऊपर के फुंसे जो होते हैं, एक खुली हुई पत्ती और एक गली वाली पत्ती, उनकी पिकिंग कर ली या तुड़ाई कर ली तो उससे ब्रांचेज ज्यादा निकलती हैं। और दूसरा 30 दिन की अवस्था में जो पीड़ा कीट है पार्ट बोरर का या सेमी लूपर का
1: जी,
2: इनके मादा मक्खी अंडे देती है तो उनका भी पिकिंग करेंगे जैसे तो वो भी हट
1: जाएंगे,
2: बाहर हो जाएंगे तो पीड़ा कीटों का प्रकोप कम हो जाएगा और शाखाएं ज्यादा निकलेंगी और वेजिटेटिव ग्रोथ एक बराबर होगी और कैनोपी उसकी बढ़ जाएगी छिछल जाएगा चना जिसको फैल जाएगा। और उसमें क्योंकि इनके पत्तियों के अंतर में नोड में फूल आते हैं तो बहुत तेजी से आएंगे
1: आ जाएंगे।
2: और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग पर्याप्त रूप से बने, उसके लिए सिंचाई 30 से 35 दिन में एक होना चाहिए, ये ध्यान रखना
1: होगा। वाकई किसान भाइयों आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, आपके सवाल बहुत ज्वलंत सवाल थे, बहुत मुद्दे के सवाल थे और सर ने उसी बेबाकी से बड़ी साफ गोई से स्पष्ट तरीके से सारे सवालों के उत्तर भी दिए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अनुभव आज आपने हमारे किसानों से हमसे साझा किया है बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप हमें अपना समय देते रहिएगा, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसान भाइयों इसी के साथ आज की इस ग्राम सभा से विदा दीजिए, मनोज सक्सेना को स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म कुदरत में। मजरू सुल्तानपुरी का गीत था और धुन मनाई थी आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है सरस्वती चंद्र से। इस गीत को आवाज दी है मुकेश ने, इंदिवर का गीत है और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश को सरस्वती चंद्र फिल्म में इंदिवर का गीत था और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं आयशा भोसले की आवाज में अंगूर फिल्म का नगमा, जिसको लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी सागर का है।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वृहत योजना की जो आपकी घर की छत को ही आपका बिजली घर बना देगी। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस क्रांतिकारी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फरवरी सन 2024 में किया गया।
1: 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी।
0: कभी एक सपना था कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, आज लाखों परिवार इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के 50 लाख से अधिक परिवार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से प्रकाशित हो रहे हैं। अब हर घर की छत पर सिर्फ सोलर पैनल नहीं बल्कि बचत, स्वावलंबन और एक दीप्तिमान भविष्य की उम्मीद रोशन हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्यों में से एक स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिल रही है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं सागर डिप्टी कलेक्टर रजत सोनी जी। आप नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के OIC भी हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है।
2: यह केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, जिसमें मुख्य तौर पर जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा देते हुए और घरेलू उपयोग में रेसिडेंशियल मतलब खुद की छत पर ही खुद की बिजली का उत्पादन करना। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्लांट लगाए जा रहे हैं। पहला प्लांट 1 किलोवाट का है जिनको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लगभग 100 यूनिट प्रति माह उनके लिए है, जिसमें 30,000 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है। दूसरा प्लांट जो है वो 2 किलोवाट का रहेगा जिसमें 60,000 रुपए तक की सब्सिडी है और लगभग ऊर्जा का उत्पादन 200 यूनिट प्रति माह। और तीसरा जो प्लांट रहेगा वह 3 किलोवाट का है जिसमें 78,000 रुपए तक सब्सिडी मिल जाती है और इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वह 300 यूनिट तक होती है, जो एक बड़े घर को या बड़े परिवार को भी कवर करती है।
0: सोलर प्लांट लगवाने के लिए किस तरह की जगह की आवश्यकता होती है? कोई विशेष स्थान होता है जहां ये लगाया जा सकता है?
2: नहीं, इसके लिए विशेष कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है। बस छत पर जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है उसमें लगभग 12 बाई 12 या थोड़ा बड़ा प्लांट है तो 16 बाई 16 की छत पर भी आसानी से लगाया जा सकता है।
0: जी, अब बात आती है आवेदन की, तो आवेदन की प्रक्रिया को हमें समझाइए।
2: इसके लिए आवेदन जो प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह योजना का पोर्टल है उस पर आसानी से आवेदन किया जा सकता है।
0: इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
2: इसमें विशेष कोई पात्रता मापदंड नहीं है, भारत के सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं और जो सरकार का लक्ष्य है वह 1 करोड़ हितग्राहियों को इससे जोड़ना है और उनको सब्सिडी उपलब्ध कराना है। और एक बात और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें केवल 5% की ब्याज दर पर इसमें लोन भी उपलब्ध हो जाता है, काफी लंबे समय के लिए लोन रहता है। जो उसकी किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट होता है, वो भी बहुत कम होता है, मुश्किल से 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच में।
0: ये योजना हमें आत्मनिर्भर तो बना ही रही है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये योजना हमारी आय का जरिया भी बन सकती है।
2: स्वाभाविक तौर पर जो अक्टूबर मंथ में इसका पूरा एक कैलकुलेशन होता है, एक ऐप से आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं और अक्टूबर मंथ में पूरा कैलकुलेशन होता है। यदि आपकी 1000 यूनिट बिजली एक्सेस में बन जाती है तो वह MPV आपसे लगभग 2.80 से 3 रुपीस के बीच में आपसे उसको रेट दे देती है आपको।
0: तो इस प्रक्रिया में जो बिजली उत्पादन हम उपभोग नहीं करते हैं उसका पैसा कहाँ दिया जाता है? क्या हितग्राही को नगद दिया जाता है या बिल में ही उसे समायोजित किया जाता है?
2: यह उनके बिल में ही समायोजित हो जाता है क्योंकि MPV का मीटर घर पर लगा होता है तो उसका जो नॉमिनल चार्ज होता है, मीटर चार्ज जो होता है, वो तो सोलर हो ना हो आपको देना ही पड़ता है, तो उसको भी उसमें समायोजित कर लिया जाता है। मीटर चार्ज को भी इसमें समायोजित कर लिया जाता है तो आपका बिल लगभग 0 भी हो सकता है।
0: अच्छा, यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कनेक्शन लेना भी जरूरी है?
2: मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का कनेक्शन होना अनिवार्य है, उसमें जो स्मार्ट मीटर होता है उसके माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। बस इसमें 2 ऑप्शन और होते हैं, एक ऑन ग्रिड एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में MPV से ही पूरा संचालित होता है और ऑफ ग्रिड में इन्वर्टर और बैटरी के माध्यम से भी आप अपनी ऊर्जा को अपने घर में ही संचित कर सकते हैं।
0: अंत में इस योजना के बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं इस योजना को लेकर एलन मस्क का एक कथन कहना चाहूंगा कि सूर्य कभी बिल नहीं देता और यह जो ऊर्जा है यह बहुत सस्टेनेबल है। आप आज निवेश करेंगे और इसकी आगामी आपको कई पीढ़ियों तक इसका लाभ मिलेगा।
0: धन्यवाद आपका। श्रोताओं, अभी आपने जाना कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे किया जाता है, और अब हम जानेंगे सोलर पैनल की गुणवत्ता कैसी होती है, उपभोक्ताओं को किन सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना है, इनकी वारंटी, मॉनिटरिंग और रखरखाव आदि के बारे में। और ये जानकारी हमें दे रहे हैं लोकेंद्र गोयल जी, आप असिस्टेंट हैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सागर में।
3: एक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना संयंत्र लगवाने के लिए हमारे विभाग से जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और अच्छे ब्रांडेड कंपनी के संयंत्र को ही लगवाना चाहिए। मार्केट में आ रहे सस्ते लो क्वालिटी के संयंत्र को नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये संयंत्र लॉन्ग लाइफ के लिए लग रहा है और इसमें ब्रांडेड कंपनी के संयंत्र में सोलर पैनल 25 साल की गारंटी के लिए आता है, उसमें लगने वाला इन्वर्टर 8 साल की गारंटी के लिए आता है, ब्रांडेड कंपनी की वायरिंग लाइफ टाइम की गारंटी के लिए आता है, इसमें लगने वाला स्ट्रक्चर लाइफ टाइम की गारंटी वाला भी आता है। तो उपभोक्ता को चाहिए अच्छे कंपनी का संयंत्र लगवाएं, जिससे उसका आपको रिजल्ट भी भविष्य में अच्छा मिलेगा। सोलर पैनल ब्रांडेड कंपनी का 25 साल की वारंटी के साथ मार्केट में उपलब्ध है। इसमें सभी ब्रांडेड कंपनियों ने अपने एक ऐप बनाए हुए हैं, सामान्यतः हर वर्ग का व्यक्ति मोबाइल को उपयोग कर रहा है। जिस भी इस कंपनी का आपने अपने घर पर वेंडर से मिलकर संयंत्र स्थापित किया है, उसका ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को आप सोलर संयंत्र के इन्वर्टर के पास ब्लूटूथ चालू कर उसका जनरेशन देख सकते हैं। कहीं भी दुनिया में रहें, अपने मोबाइल में इंटरनेट चालू करके उसकी रीडिंग वहीं बैठे बैठे पूरी जानकारी पर डे की, पर मिनट की, पर मंथ की, पर ईयर की ले सकते हैं। इसमें सिस्टम के बारे में, आपको डिस्कॉम में जा रही लाइट के बारे में, घर पर उपयोग होने वाली लाइट के बारे में पूरा आपको अपने मोबाइल पर डाटा प्रतिदिन दिखता है। अभी वर्तमान में जो सोलर पैनल मार्केट में उपलब्ध हैं, वो डिस्कॉम धातु से बनाए हुए पैनल हैं, बहुत सेंसर पैनल हैं। सुबह 6 बजे जब सूर्यनारायण देव का उदय नहीं होता, उसके पहले ही आप देखिए सिस्टम में, इन्वर्टर में, अपने मोबाइल पे देखिए, जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से शाम को भी, सूर्यास्त के बाद भी उजाला जब रहता है वायुमंडल में, उस उजाले में भी सोलर पैनल काम करता है। या यूं कहे साल भर में इसका एवरेज जितने दिन भी कम धूप भी होती है तब भी जनरेशन पर्याप्त होता है और उपभोक्ता को पर्याप्त जनरेशन और इसका लाभ मिलता है। हमारे विभाग का एक स्लोगन भी है, सौर ऊर्जा से देश का विकास, गांव गांव बिजली, घर घर प्रकाश।
0: गांव गांव बिजली, घर घर प्रकाश, ये स्लोगन है ऊर्जा विभाग का। अब हम बात कर रहे हैं इस योजना के हितग्राहियों से और सुनते हैं सागर शहर के क्षेत्र बड़ा बाजार निवासी अनुश्री जैन को।
4: पहले मैं पेट्रोल वाली गाड़ी चलाती थी, उसके बाद जब ये सिस्टम लगाया तो मुझे लगा कि मुझे दूसरी ई वाहन का यूज करना चाहिए, तो मैंने एक ई वाहन खरीदा और मेरा बिल फिर भी जीरो है और मेरा पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा है। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सभी ये सिस्टम लगवाएं और अपने सारे इक्विपमेंट्स को ई में कन्वर्ट करें, जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और एनवायरमेंट के लिए भी ये सिस्टम फ्रेंडली है। मैंने 2 साल पहले ये सिस्टम लगवाया था। मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है, जिसमें मुझे 78,000 की सब्सिडी भी 2 महीने बाद मिल गई थी।
0: और अब सुनिए इस योजना के हितग्राही प्रोफेसर गिरीश मोहन दुबे को।
5: मैं गिरीश मोहन दुबे, डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग से मैं प्रोफेसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। जब मैं पहली बार अपने एक मित्र के यहाँ गया और मैंने वहाँ सोलर प्लांट देखा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपने घर में भी सोलर प्लांट लगाऊं। और इस सोलर प्लांट को लगभग 3 साल हो गए हैं। कंपनी से सीधे बात की थी और कंपनी ने सब्सिडी जो है उसको इंक्लूड करते हुए मुझे 4 KV का प्लांट लगाया था। इस पर मैंने अभी तक 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है, 3 साल से अधिक अवधि होने को है, क्योंकि उनसे मेरा 3 महीने में सफाई का एग्रीमेंट है। मैंने भी स्वयं अपने थोड़े से व्यय से उस पर इस तरह की व्यवस्था की है कि साप्ताहिक रूप से मैं उस पैनल को साफ करता हूं, ताकि जितना उसकी कैपेसिटी है वह मैक्सिमम हमारे पास प्राप्त हो सके। मैं कहूंगा ये प्लांट जो है सभी को लगाना चाहिए और इससे जो सरकारी ऊर्जा है उसका भी व्यय कम हुआ है। मैंने कम से कम 8 से 10 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे अनुभव से या मेरे सोलर प्लांट से प्रेरित होकर अपने घर में लगाया है।
0: और अब हितग्राही राजकुमारी जैन के अनुभव।
6: ऊर्जा सिस्टम से बिजली में हमको पूर्णतः लाभ मिला है, हमारा जीरो बिल आता है, सभी सिस्टम हमारे यहाँ काम करते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस योजना से जुड़े।
0: श्रोताओं, विशेषज्ञों और हितग्राहियों की सकारात्मक राय इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत को हरित और अधिक ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर आलोकित कर रही है। आइए हम सब मिलकर इस सुनहरे सफर का हिस्सा बने और सशक्त भारत के विकास की डगर पर कदम बढ़ाएं। डगर विकास की सूत्रधार अदिति जैन, प्रस्तुति सुब्रता यादव, योगदान आकाशवाणी सागर।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की प्रस्तुति आकाशवाणी सागर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर न ही अहंकार केवल मनोरंजन ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूर।

0: మన్ను బాయ్ మోటార్ చలి పామ్ పామ్ పామ్
1: మన్ను బాయ్ మోటార్ చలి పామ్ పామ్ పామ్.
2: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान.
3: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें
2: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें.
3: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें.
2: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें.
3: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं.
2: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं.
3: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें.
2: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें.
3: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें.
2: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें.
3: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें.
2: थोड़ी सी सावधानी
3: दूर करे सभी परेशानी.
4: बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे बम बम बम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम.
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी.
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए.
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ ये ट्रैफिक.
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त.
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक.
5: शाम सुहानी हो
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना. घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना. चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
2: आकाशवाणी. महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है. देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता. दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता.
9: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें. धन्यवाद. जय हिंद.

तुम्हारे लिए इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, संगीत निर्देशन जयदेव का था। इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं सनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा महाभारत दिखा, एशियाड दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट भी है न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है कहानी एवर बीन टोल्ड।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलरम मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ

0: स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
3: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
3: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
5: तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
3: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची
5: फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
3: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
6: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to 5 assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its 7 conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in 4th place with 85 medals comprising 21 gold. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
8: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
7: Citing the Quad as an example, Dr. Jaishankar said it demonstrates cooperation among middle powers with an established major power.
8: Today in a maritime space, in the Indo-Pacific space, we have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India, Middle East, Europe connectivity corridor, the international north-south transport corridor, even the polar route, the northern sea route could be the subject of cooperation.
7: Second Principal Secretary to the Prime Minister Shaktikant Das has said restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He was speaking at the Kautilya Economic Conclave in New Delhi today.
9: India's financial sector has emerged as a strong pillar of economic growth, supported by reforms such as the Insolvency and Bankruptcy Code, bank recapitalization and constructive regulatory oversight. Gross non-performing assets have fallen sharply to 1.68% in June 2026, while bank profitability have improved significantly. And finally, prudent management of external sector has also supported India's efforts towards macroeconomic stability.
7: Earlier in the day, talking to the media on the sidelines of the conclave, Secretary in the Ministry of Statistics and Program Implementation, Saurabh Garg, said India's economic resilience is now being reflected in upward revisions to the country's growth estimates by various international agencies.
10: The first quarter growth rate was anyway at 7.8%, and we are seeing the continued resilience of the economy. If you look at the corporate sector results, they have been extremely positive in the last few weeks that they have come out. You look at capital investment, including private sector capital investment, that is continuing to do well. Government investment was anyway high. And the other sectors too, whether you look at each of the manufacturing sectors or the service sectors, if you look at some of the service sector growth rates, they have been extremely positive.
7: Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Addressing the gathering, the Union Minister described the 3D concrete printing project as a major step towards modernizing rural housing.
11: 3D concrete printing technology.
12: We are going to build these houses using 3D concrete printing technology, a new technology which will take less time, as we are currently adopting this technology on an experimental basis. Our effort will be to ensure these houses are completed within 6 months with lower costs, less labor required, and a longer lifespan so that they last for a longer time.
7: Vice President C.P. Radhakrishnan has said that a truly developed India must be built on trust among citizens, strong family values, character among the youth, and compassion in society. Mr. Radhakrishnan was addressing the Mahaparikshamapana ceremony organized by Bhagwan Mahavir Memorial Committee and Jain Mahasabham in New Delhi today. He described the occasion as a celebration of the universal values of forgiveness, friendship, non-violence and inner purification.
13: The depth with which the Jain tradition has been transformed forgiveness into spiritual discipline holds profound relevance for India and for humanity as a whole. India's great civilizational tradition has always proclaimed Vasudeva Kutumbakam, the world is one family.
7: This is Akashwani giving you the news. Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurantakam and Tharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into ease of justice through the new criminal laws. These laws are the Bharatiya Nyay Sahita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita 2023, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023.
14: The new criminal laws, which came into force from 1st of July 2024, mark a significant step towards empowering the citizens. These laws aim to create a more accessible, supportive and efficient justice system for everyone. Under the new criminal laws, provisions such as introduction of zero FIR, fast-track investigations, limited adjournments, forensic evidence collection and videography, gender-neutral offenses have been introduced. Addressing a gathering after the implementation of new criminal laws, Prime Minister Narendra Modi said, the core mantra of Bharatiya Nyay Sahita is citizen first.
4: Bharatiya Nyay Sahita ka mool mantra hai citizen first. Ye kanun nagrik adhikaron ke protector ban rahe hain. Ease of justice ka aadhar ban rahe hain. Pehle FIR karwana bhi kitna mushkil hota tha, lekin ab zero FIR ko bhi kanuni roop de diya gaya hai.
14: In a major legal reform, the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 has introduced stringent provisions to tackle organized crime and enhance safety for women and children. Talking exclusively to Akashwani News, Sunil Kumar, advocate in Delhi High Court, said the new criminal laws introduced provisions for organized crimes, terrorism, mob lynching, and recognize digital evidences and promote electronic FIRs.
5: The three new criminal laws, Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and Bharatiya Sakshat Adhiniyam, replace the old IPC, CRPC and Evidence Act. Their main advantages are modernization of criminal law, faster justice, greater use of technology and stronger protection for victims.
14: Earlier, different punishments were prescribed for gang rape on a girl below the age of 16 years and 12 years. The provision has been modified and now gang rape on a woman below the age of 18 years is punishable with imprisonment of life or death. Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: Iran has said the Strait of Hormuz will not reopen until the United States meets seven conditions outlined in a June interim agreement, as Tehran and Washington remain at odds over efforts to end their conflict. Iranian state media today quoted Parliament Speaker Mohammad Bakar Kalibaf as saying that Tehran's position on reopening the strategic waterway was completely clear and firm. Separately, Iranian army spokesperson Mohammad Akarminia said Iran will seek to extend the range of its missiles following its recent war with the United States. Speaking to a news agency, he said the conflict had highlighted the need for Iran to develop longer-range missiles and that the country had already begun taking steps in that direction. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has claimed that the war with Iran will end very quickly and predicted that oil prices will fall sharply once the conflict was over. On the other hand, Yemeni forces have claimed that the Iran-backed Houthi group suffered heavy losses on key fronts in Yemen, while Saudi Arabia has rejected a Houthi claim that Aramco oil refinery in Riyadh was targeted in a missile and drone attack. According to media reports, the Yemeni armed forces of the internationally recognized government carried out 97 operations against Houthi reinforcements on the Tur al-Balah and Taiz fronts. On to sports now. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The ceremony featured the traditional parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover of ceremonial torch and flag to Doha, the host city for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour for the closing ceremony was India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda. The double gold medalist led the Indian contingent in a proud moment for the nation. India signed off from the games in fourth place in the overall medal standings behind China, Japan and South Korea. The Indian contingent returned with an impressive haul of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 47 bronze. It is India's second highest medal tally in Asian Games history, surpassed only by the record-breaking performance at Hangzhou in 2023. As the Asian Games draw to close today, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended compliments to every member of the Indian contingent for representing the nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. In their messages, the Vice President and the Prime Minister congratulated all the medal winners and expressed hope that these games inspire even greater achievements in the years ahead and strengthen sports at the grassroots too. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over coastal and south interior Karnataka, Kerala, Mahi, Tamil Nadu and Puducherry for the next 2 to 3 days. The IMD said thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds may prevail over Andhra Pradesh, Telangana, Uttarakhand and Tripura tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agendas. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan hands over 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh, lays foundation stone for country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology. Campaigning ends for by-polls to five assembly seats across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and a Lok Sabha constituency in Assam, voting on Tuesday. Iran says Strait of Hormuz to remain closed until US meets its seven conditions, plans to expand range of missiles. And Asian Games 2026 draw to a close in Japan in a dazzling ceremony. India sign off in fourth place with 85 medals comprising 21 gold. That is all in the news at 9. Good night. Spotlight.
12: This is Akashvani. In the program Spotlight,

0: बात लगती है तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
1: उम्र बढ़ती है तो शरीर
2: करता चमर होगा।
3: वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन्द्र।

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरे से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

0: घर है।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

0: शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।
1: बचपन के

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: छाएगी।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरती और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वीं म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछाल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurandagam and Tarapuram in Tamil Nadu, Tattanjavari in Puducherry and Vijayanagar and Manigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Naga Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Naga Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।